मुझे मौका चाहे गीत सुबेत पौध आई को ना अमका सर्वा के न सोया मन बोगले आऊ चिंता आता मुखले पौध जाऊ न सा गिटार अचे तार चाफरा डिकोस्ता हजे उतरा के हेरी कोजारियो अने ताड़ो बोसेलो गिटार अचे तारे तकास तो समर्पिता मुल्ले बरे हे सुबेत पौध आता तुमचे कते प्रसार जतले।